0: कुनै कम्प्युटर कोर्सहरू सिकाउन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्। यस क्षेत्रकै सुविधा सम्पन्न सर्वोत्कृष्ट स्थानमा रहेको एआर कम्प्युटर एजुकेशन सेन्टरमा आजै आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहोस्।
1: गुणस्तरीय कम्प्युटर शिक्षा आजको आवश्यकता, डिजिटल नेपाल निर्माणमा सबैको सहभागिता भन्ने मूल नाराका साथ विभिन्न कोर्सहरूमा 2083-84 को लागि नयाँ भर्ना खोलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ।
0: नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त कोर्सहरूमा 1 महिने इन्टरनेट कोर्स, 1 महिने प्रोग्रामिङ कोर्स, 3 महिने बेसिक कोर्स, 3 महिने ग्राफिक कोर्स, 1 महिने एकाउन्टिङ कोर्स, 3 महिने हार्डवेयर कोर्स, 3 महिने मोबाइल रिपेयरिङ कोर्स,
1: 6 महिने डिप्लोमा कोर्स, 1 वर्षे प्रोफेसनल डिप्लोमा कोर्स, 1 वर्षे डिप्लोमा कोर्स, 3 महिने कम्प्युटर रिपेयरिङ र अन्य एडभान्स कोर्सहरू।
0: समूहमा आउने विद्यार्थीहरूलाई विशेष छुटको व्यवस्था भएको, एसई दिएका विद्यार्थीहरूलाई 15% छुट, कक्षा 5 र 8 का विद्यार्थीहरूका लागि 10% छुटको व्यवस्था रहेको, कक्षा 5 र 8 का विद्यार्थीहरूलाई भर्ना शुल्क छुट दिइनेछ, साथै एसई दिएका विद्यार्थीहरूलाई भर्ना शुल्क छुट गरिनेछ। दलित, जनजाति, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्गहरूका लागि विशेष छुटको व्यवस्था रहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। प्रोप्राइटर आशाराम चौधरी, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 482 66 857 र 98 195 45 522। एआर कम्प्युटर इन्स्टिच्युट, भुरीगाउँ बजार, बर्दिया।
2: जितपुर वाली, यह साल तो निश्चिंत हो गवा गए।
3: हाँ, तब पतलिया याद करो तो जू डराए लागा था। पानी जब बरसत रहा तब इतना आनंद से कहाँ बैठे मिलत रहा। सोचो तब नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा।
2: हाँ तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल गवा।
4: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होत है, यही नाते बाढ़ से बचे खरती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए। नदी नारा में पानी अगर बढ़ा है तो सतर्क हो जावा जाए। एम्बुलेंस, सुरक्षा निकाय, स्वयं सेविका सबके संपर्क करे, सूची तैयार पारा जाए। एकाएक जरूरत पड़े वाला सर सामान के झोला तैयार रखा जाए। सतवे बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए, सर सफाई में ध्यान दिया जाए।
5: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश।
6: सबैले मलाई मात्र किन हेर्दैछन् कि आज पार्टीमा
7: हेर्दैनन् त? यति आकर्षक र नयाँ मोडेलका गहना लगाएर आएपछि बरु भन न, म पनि बनाउँछु गएर।
6: उही सबैको रोजाइमा पर्न सफल विजय ज्वेलर्समा त हुने कान्छी।
8: हजुर, हामी कहाँ बिना रसायनको नम्बर 1 सुनबाट आधुनिक किसिमका गरगहना, रानीहार, छटके तिलहरी, चूडा, तिलहरी, चन्द्रमा, झुम्की, बिन्दिया जस्ता आधुनिक किसिमका गरगहना, चाँदीका गहनाहरू ग्यारेन्टीका साथ तयार गर्नुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ।
6: सुनचाँदीमा शुद्धता नै हाम्रो पहिचान हो, साथै ज्यालामा विशेष छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ।
8: प्रोप्राइटर विजय सुनार, विजय ज्वेलर्स, ठाकुरबाबा नगरपालिका 1, भुरीगाउँ बजार, बर्दिया। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 195 480 01 र 98 686 9140।
9: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो टाइगर 99.2 MHz। गर्जन सधैं बाघ सुन।

0: यिनका कामो टाटल भयाल बहक निसेक जाए मै त बिहान नि खेतवा जाए टुना खाए
1: बाबा लोई छाता थेलै जाओ खेतवा से लौटा बेर महा कर्रा घाम रखा
0: ए का बिसिनु कलक त छा त बिसाई टुका हु लान त छाता ओहो मै त एक पानी बोटलिन जीवन जलझन मिलाई बिसारनु
1: तु बिस्ताजी ठोकैका मै त मन पानी जीवन जल मिला खाधेर रोक्नु बाबा बेन सुई पानी भरि सक्कु पि होना पस्ना नसे निकर्क जो सुक्खा गोजेटका
0: पटावा मही अब बिहानका काम दिनका आराम
1: हा त बिहान काम दिनका आराम
2: गर्मी मौसममा लु चिटिङ्गा घामन से बचकला छाटा नकी कपार छोप पनिङ्गी ध्यार से ध्यार पानी पिए शरीर जूर धरक लाग मौसमी फलफुल खाई ओ घर स्कूल के छानी जुरार बनेना जुगार लगाई
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: रेडियो टाइगर 79.2 मेगाहर्ज नामै काफी छ।

0: अशोक साल त ढुक्क नारे बत्ती
1: हाँ त पोर्सालिक बास सम्झोट आम्मी डर लक्टी रहरबरा पानी बस्दा बेर अस्ति चिमचाम कहाँ रहेछ जायो त सोचोट लट्टी ठिक्कम घर दान दान पानी बर्से टिकी मन छटपटाए लाग
0: हाँ त धन्न ब्यालम्ब ढिकुम सुरक्षित ठाउँमा सरली नारी बत्ती
1: हाँ हो बदा
2: बर्खक ब्यालमा बहिया ध्यार जोखिम रहत उहमार बहिया से बचकला पहिला सावधानी अपनाए लद्या खोलम पानी बरल बाकल से सावधान रहिए एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण पर सूची बनाई एक चुट्टे प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बरखक ब्यालम संक्रमण के डर ध्यार हुई लोगों से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: ये है आपका रेडियो रेडियो टाइगर बर्दिया की आवाज़ वॉइस ऑफ बर्दिया वॉइस ऑफ बर्दिया

मैं ठीक हो गया मैं ठीक हो गया मैं मेरी टांगें चल सकती है मैं नाच सकता हूँ।